0: साथ सच बताऊं, उस दिन गन अपने सर पर क्यों रखी?
1: पता नहीं, सिक्स सेंस, इंट्यूशन। मुझे बस इतना पता था कि तुम मुझे बचा लोगे। आई बिलीव इन यू।
0: पर
1: चुप चुप।

अजीब किस्सा देखा खुदकुशी का। दुनिया से तंग आकर एक आशिक ने मोहब्बत कर ली।